निःचल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जनोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावै सोई तीसी, जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

परी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो

दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अस्तु जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो जाए सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भौ निकट न तिन नर की रहै हो जो जाकि एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह

काज आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मोए, हार

अंत लाएंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख के देह मोह कोटक बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत

नानक हर संग मीत सखहु टल गुर सेवियै अहन सुसहज सुभाय दर्शन पसे गुरु कै जन

जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझहता है। साज गुरा संतोष का धर्म ग्रथ आओ, त्रे तरह जत का जोर ग्रथ आओ। दुआ पर अत पै का

ब्राह्मण कौ कर लब गोबर तर न जाई धोती टिका तेज माली तहन मिले शंखाई अंतर पूजा परखते बसन।

मन बाशत फल देत है स्वामी इच्छा पूरक सब सुखदाता हर इच्छा पूरक सर्व सुख दाता।

सतगुरु बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संघहारे जन्म पवनते नरक पड़ते तिनके कुल उधारे तिनके कुल उधारे सतगुरु बचन तुम्हारे कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे से प्रगट हर द्वारे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे कवन उपमा देओ कवन बड़ाई नानक खिन खिन बारे कवन उपमा देओ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण न सको तू ठाकुर ऊच भगवाना कवन उपमा देओ कवन बड़ाई ना

सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।

जिन तुरे पया संजोग सजन सचा पातशाह शिरशाह दशाह जिस पास बैठे आ सोही है